0: तेरे इश्क में चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं में मदहोश है,
1: तेरी प्यारी मेरी दावत की,
0: तेरे इश्क में बहकर ये दिलवर है, तेरे इश्क में चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं